विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆଦିବାସୀ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଞ୍ଜୋଡ଼ି। ଆଜି ଏଥିରେ କୋୟା ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲେ ଭୀମ ମାଡ଼କାମୀ ଏବଂ ସାଥୀ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ସକାଳେ 6:55 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निज क्षेत्रम् अन्तरिक्षानुसन्धान क्षेत्रे प्रवर्तितुं प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विक वातावरणस्य निर्माणं भवेत्, तथा च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
2: हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: श्री मोदी एतत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य 20 नवोद्यमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः संस्थापकैः च सह संवादावधौ उक्तवान्। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे ह्यः प्रकाशितस्य संवादस्य प्रतिलेखानुसारं प्रधानमन्त्री अन्तरिक्षक्षेत्रे उद्यमान् प्रारम्भं कर्तुं भारतस्य व्ययसम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताम् अपि प्रकाशितवान्। संवादावधौ श्रीमोदी अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुं समर्थं सुदृढं अन्तरिक्षक्षेत्रीयं परितन्त्र

0: निर्मातुं च प्रेरितवान्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः रूस देशस्य द्विदिवसीयायै आधिकारिक यात्रायै मॉस्को नगरं प्राप्तवान्। यात्रावधौ विदेश मंत्री व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोग चेत्यादिषु विषयेषु भारत रूस अन्तः प्रशासकीय आयोगस्य 27वें अधिवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। असौ रूसस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति तथा क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 27वें जापानस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां भविष्यति। असौ टोक्यो नागोया ओसाका चेत्येतेषां स्थलानां यात्रां करिष्यति अथ च जापानं प्रति भारतस्य अद्यावधि बृहत्तमस्य व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। अस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले 200+ व्यापार प्रतिनिधयः सम्मिलिताः सन्ति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषा यात्रा उभयोः देशयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिं प्रति विद्यमानं महत्वाकांक्षायाः व्यापकतां दर्शयति। इयं यात्रा तस्मिन् समये भवति यदा भारतं जापानं च व्यापार निवेश सम्बन्धान् महत्वपूर्णतया सुदृढीकर्तुं प्रयतमानौ स्तः। ब्रिक्स क्रीडा मन्त्रिणाम् उपवेशनं ह्यः आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम् नगरे क्रीडा सम्बद्ध संयुक्त घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्ना। घोषणापत्रे सदस्य देशैः संवादेन पारस्परिक सम्मानेन अथ सर्वसमावेशभावेन क्रीडाक्षेत्रे सहयोगं सुदृढं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनरुक्ता। एतत् उपवेशनम् अस्मिन् वर्षे भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः अन्तर्गतम् आयोजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य एलुरु जनपदस्य मुसुनुरु ग्रामं गमिष्यति। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः मुसुनुरु ग्रामे भारतस्य प्रथमस्य अनुवांशिकरूपेण असंशोधितस्य उच्चविस्तारक्षमतायुक्तस्य पॉपकॉर्न मेज इत्यस्य संकर बीजस्य शुभारंभं करिष्यति। असौ कृषकेभ्यः सम्माननं प्रदास्यति तथा कृषिक्षेत्र संबंधान हितधारकान अन्यांच सहभागिनः संबोधयिष्यति। इति वार्ताः।
1: कार्यक्रम रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी जयपुर आसंतु जानिबा आमर आज प्रचार हवाक थिबा केतोटी प्रमुख कार्यक्रम रो संपर्क रे। आज राति 9:30 रे सुनिबे नाटक नस्टलजिया, रचना निर्मला अग्रवाल, बेतार रूपांतर प्रीति कश्यप, ओडिया भाषांतर त्रिविक्रम रथ, प्रयोजना अशोक मिश्र। सकाळ 7:25 शुणिबे वर्ण विवाह वर्णाली क्रमरे सुरभि, एथिरे प्रख्यात कंठशिल्पी प्रणव किशोर पट्टनायकंक सह साक्षात्कारर प्रथम भाग शुणिबे। सकाळ 9:30 सप्तधारारे रहिछि ओडिया चलचित्रर गीत, हिंदी चलचित्रर गीत शुणिबे सकाळ 9:00 गीतधारारे, पुणे पूर्वाह्न 10:05 एवं दिन 2:15 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रचार करिबु पूर्वाह्न 10:30 दिन 11:00 रहिछि आकाशवाणी लाइव। लाइव फोन इन कार्यक्रम कथा आपणकर गीत आमर शुणिबे मध्याह्न 12:00। निर्जरणी शुणिबे दिन 1:05 एथिरे सितार एवं बेहलारे धुन परिवेषण करिबे विजय कुमार सामंतराय एवं भीमसेन महाराणा, परे बंशीरे धुन परिवेषण करिबे नरेन्द्र कुमार पंडा। महिलामानक पई कार्यक्रम घर ओ घरणी रहिछि दिन 1:20 एथिरे शुणिबे बसिबा अपेक्षा काशिबा भल, या उपरे प्रतिक्रिया। विषय नारीक पई रातिरे काम करिबा सुरक्षित कि, परे परे शुणिबे नवजात शिशुर जत्न। अपराह्न

0: ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମିଡିୟମ୍ ୱେଭ୍ରେ 204.5 meter ତଥା 1467 କିଲୋ ହର୍ଜ ଯୋଗେ ଏବଂ ଏଫ୍ଏମ୍ର 103.6 megahertz ଯୋଗେ। ସମୟ ସକାଳ 8:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ, ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ସକାଳ 8:30 ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
2: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है, बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन

0: रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। होर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव

0: मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन आईक्यू और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित

0: नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में पांचवें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए

0: वहीं रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: हर हर महादेव।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
2: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन कंट्री स्पेस सेक्टर टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट अट्रैक्ट्स ग्लोबल स्पेस टैलेंट टू इंडिया। Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kenitza Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
5: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है, बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
4: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ସପ୍ତଧାରାରେ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମନୋଜ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। दो दिवसीय

0: ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर मध्य रात्रि 2:30 बजे खुल गया। भगवान महाकाल को पहले पंचामृत से स्नान कराया गया और फिर पवित्र राख से सुशोभित किया गया। वहीं झारखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्व प्रसिद्ध देवघर स्थित 12 पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ से लेकर राज्य की राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक हर हर महादेव के जयकारे पूरे राज्य में गूंज रहे हैं, जहां श्रद्धालु भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने उन्हें एक तीक्ष्ण कानूनी विशेषज्ञ, एक कुशल वक्ता और एक निपुण प्रशासक बताया। गृह मंत्री ने कहा कि अरुण जेटली ने प्रभावी संवाद के माध्यम से आम जनता तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनीजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रोमांचक 9वें दौर के बाद प्रणेश ने मध्य यूरोप के सबसे प्रतिस्पर्धी ओपन टूर्नामेंटों में से एक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ଆପଣମାନେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମିଡିୟମ୍ ୱେଭ୍ରେ 204.5 ମିଟର ତଥା 1467 କିଲୋ ହର୍ଜ ଯୋଗେ, ଏଫ୍ଏମ୍ର 103.6 ମେଗାହର୍ଜ ଯୋଗେ। ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ।

चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल ऐप

अफसाना प्यार का ए चलचित्र रे शिल्पीले आशा भोसले एवं अमित कुमार अंजान का गीत संगीत बप्पी लाहिरी

0: सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
1: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
0: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
1: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
1: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
1: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
1: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो

0: शब्दंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए

0: यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े

0: के भूभाग का हिस्सा था, जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर, आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा, उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
1: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है, आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका

0: है आकाश की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।

0: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुलफाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
1: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
0: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
2: Marvelous.
1: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
3: ये किस तरह की मूर्ति है?
4: ये किस तरह की मूर्ति है?
5: ऐसी मूर्ति तो मैंने
6: वाव वंडरफुल।
0: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
1: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
0: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
1: लोग सोचने लगे, भलाई कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
0: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
3: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
4: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
1: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
0: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
1: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
2: ग्रेट, मार्वेलस।
4: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
2: वंडरफुल।
8: हाँ,
9: हम सहमत हैं।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
7: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
1: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
0: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
1: आज करे सो अब,

0: पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: हेलो नमस्कार नमस्ते बहुत बहुत बहुत शुभेच्छा वेलकम आजिर लाइव फोन इन कार्यक्रम कथा आपणकर गीत अमर को आज मु एकुटिया नुह आज मो सहित अछंती ए टिके अग्रु जहां को आपण सुनुथिले आकाशवाणी लाइव रे मां को नेकी से सुंदर सुंदर कथा कहुथिले आपण को
1: नमस्कार श्रोता बंधु मु लीना नंद जानिपारुछन्ति त आज चालंतु ना आमे आम गपिबा
0: हाँ फोन टे आसी थिला कटी जाइछि किंतु

0: हेलो कथा आकलन कर देता हमर
1: सीताराम आज्ञा।
0: जय सीताराम
1: आज्ञा बहेदार आज्ञा बहुत दिनो सुजोग ते मिलला आपन कर से कथा आवार लागि
0: आज्ञा। आउ जने अछंती अपा लीना नंद अपा
1: आज्ञा आज्ञा ताको भी मोर जय सीताराम।
0: आपन सीताराम कर भक्त बुद्धि प्रभु सीताराम को आपन बहुत माननती
1: आज्ञा। सीताराम जय सीताराम बोले आज्ञा देखून आम नमस्कार अपेक्षा जय सीताराम बोलवाटा आपन को नमस्कार भी है भगवान नाम उच्चारण भी है
0: बहुत बढ़िया।
1: हमर गीता कहूजे भी जेठाने माने भगवान नाम उच्चारण है सेठाने माने पाप अधर्म इरा गुडाक नाई रो
0: जय सीताराम
1: आपन संगे आज्ञा जुआर बेटे संगे आम।

0: कथा आपणंकर गीत आमर
1: हेलो अपा नमस्कार
0: नमस्कार स्वर्ण प्रभा बड़गड़ रु कहउछंती केते केते हांडी जळो नेले आजि अभिषेक लागी कोहंतु
1: नमस्कार
0: जल अभिषेक कर जल अभिषेक कर
1: मंदिर
0: भिड़ थी
1: मंदिर तो बहुत भिड़ थी किंतु मु टिके लेट रे जाई थी वर्तमान पहुंची मंदिर रु आसी के बेली
0: अच्छा स्वर्ण प्रभा गोटे कथा कहतु आप भिड़ भितर पशिकी के सहित झगड़ा कर मंदिर रे
1: नाई मंदिर तो भितर तो भिड़ हुए पर्व पर्वाणी तो सेमती तो का सांग गाली
2: मानते ठेला पेल कहुणी मारिके आग को पल
1: झगड़ा हुए ना समस्त लाइन लंबी थे लाइन रे थे धाड़ी रे किए कार पानी बाल्टी रे कार इरा कोडी हाथ को मार दबो कार पानी का गोड़ रे पड़ी जीवो एंती एमिति कोहणी मार दबो तो एमिति ठेला पेला रे हेई छी हेई छी ठीके अंदा कोहा को हेई जाउ
0: कोहणी कोहणी मार छंदी नै काको
1: नाही मते मते मारी छंदी मते मार छंदी
0: तुमे कोन काको मारी नांदी आपण मार खाइ छंदी
1: तारे तो होए मंदिर रे भीड़ हेले सेमिति होउछि आ पर्व पर्वाणी रे तो भीड़ हेबो ही हेबो इटा श्रावण मास महादेवंकर तो पर्व तो सेमिति भीड़ होउछि किंतु मोर टिके लेट रे जाय मोर टिके

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलोरा जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गुमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सदस्यता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने

0: कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक के मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करि प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो आपण माने वर्तमान कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रो प्रचार करुछु जंत्र संगीतर कार्यक्रम निर्छरिणी। प्रथमे आसंतु सुनिबा बंशीवादन, शिल्पी नरेन्द्र कुमार पंडा।

0: चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म दाखल करंतु आज ही एही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।
1: एथर सितारे एवं भायोलिन रे धुन सुनंतु शिल्पी विजय कुमार सामंतरा एवं भीमसेन महाराणा तबला रे सुशांत अधिकारी गिटार रे अछंते शिल्पी इंदर सिंह।

चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे। मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु। किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म दाखल करंतु। आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु। अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।

0: एक ऐतिहासिक पदक्षेप लेखुची सफलतार कहानी सुभद्रा
1: चारोटी किस्तीर सफल वितरण सह एक कोटी रु ऊर्ध महिला जीवन रे आसी स्वावलंबनर नुआ परिचय जीविका विकासरु रोजगार उद्यमरु आत्मविश्वास सुभद्रा गढुची समृद्ध ओडिसार नुआ भविष्यत आसंता अगस्त 28 पवित्र राखी पूर्णिमा अवसर रे एक कोटी रु ऊर्ध महिला सुभद्रार पंचम किस्ती बाबदक मिलिबो 5000 कोटी रु ऊर्ध टंकार सहायता राशि एहि सहायता देबो नुआ शक्ति नुआ आशा नुआ संभावना
0: जीविकारु समृद्धिर यात्रा सुभद्रा महिला ओ शिशु विकास विभाग ओडिसा सरकार
2: आपण माने वर्तमान हिंदी कथा चित्र गीतर कार्यक्रम सुनुछन्ते आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररो एथर आसन्तु शुणिबा जुदाई कथाचित्रर गीतटि कण्ठदान करिछन्ति अलका याग्निक एवं अभिजित समीरक गीतरे संगीत देइछन्ति नदीम श्रवण

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत कौर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खय्याम, फिल्म का नाम है शगुन।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना चित्रगुप्त की, फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीत है उषा खन्ना का, फिल्म का नाम है शबनम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: ヘイリ
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों सखाओं सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा
2: और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। चंचल जी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं और ये मुलाकात भी बहुत अच्छी है।
2: बिल्कुल, मुलाकातें अच्छी होती है तो अच्छा लगता है कि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, कुछ मुश्किल हालात होते हैं और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। एक जो जीवन एक मंच की तरह होता है, रंगमंच की तरह होता है, तो यहाँ खेल खेलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है, तो मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन उससे डरे नहीं, हारे नहीं और अपना काम जो है अपने मन को स्थिर रखते हुए करते रहना पड़ता है।
1: कई बार मुश्किल वक्त में हम लगता है कि रुक जाएं या गिव अप कर देते हैं ना, हार मान लेते हैं, तो वहीं वो थम जाता है। और पानी भी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, जहां वो रुकता है वहां उसमें काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमें हमारे मन के अंदर भी वो नकारात्मकता जो है वो घर करने लगती है। इसे डरना नहीं है और एक समय आने के बाद हमें लगेगा कि ये जो मुश्किल वक्त आया था ये हमें बहुत कुछ सिखा कर गया।
2: बिल्कुल, थोड़े से उपाय होते हैं जो हम कर लें तो ये जो मुश्किल समय होता है आसान हो जाता है। अब वो उपाय क्या है, बातें क्या है, वो तो हम बाद में जब विषय पर बात करेंगे तभी आपको बताएंगे।
1: लेकिन और हमारे सुनने वाले भी तो अपने अनुभव बताएंगे, अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स उनके आएंगे।
2: हाँ बिल्कुल, तो आज जो विषय है उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो कथा सुधा की बात करते हैं। कहानी है छह आने का टिकट, इसका पहला भाग। जी हाँ, आज सुनेंगे आप। देखो अब इस जमाने में अगर हम छह आने के टिकट की बात करें तो क्या हमें कुछ सत्यता लगती है इसमें?
1: नहीं लगती है। और आजकल

0: जमाने के जो बच्चे हैं जो अभी बढ़ रहे हैं जिनकी उम्र 15 से 16 साल होगी उनको तो आने के बारे में पता भी नहीं होगा कि आना कैसा हुआ करता था। लेकिन इन कहानियों का अस्तित्व, इनका जो मर्म है, इन्हें अगर हम समझेंगे ना तो इनकी सीख कहीं भी कोई पुरानी नहीं है। सिर्फ एक आने का उनको समझ नहीं आएगा कि आना क्या होता है। तो हर मुद्रा होती है एक तरह की, रुपया पैसा जो भी है, ये आना भी पहले चला करते, रत्ती आना दो आना, ये सब वही मुद्राएं हैं।
1: बिल्कुल। और दूसरा जो विषय है, मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं हारे नहीं, ये विषय है जिस पर हमने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा भी कर ली है।
0: और हम करते हैं सोमवार के दिन प्रादेशिक व्यंजनों की बात। तो अगस्त के महीने में जिस प्रदेश के व्यंजन की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी सखियां हमसे जुड़ रही हैं इनको लेकर, ये है पश्चिम बंगाल की, जो भी बहुत चटपटी, मीठी, खट्टी और बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि चर्चित रेसिपीज हैं, उनकी बात।
1: तो आज लाबरा और रसगुल्ला, ये जो दो मिठाइयां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि लाबरा जो है वो मिठाई नहीं है। रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन लाबरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है।
1: अच्छा।
0: तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहाँ उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब मिश्रित सब्जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लाबरा। और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा, उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी सुना है, और रसगुल्ला भले वो बंगाल का हो लेकिन सुनते ही पानी तो सबके मुंह में आ जाता है।
1: बड़ा मुलायम मुलायम सा और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है, और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है। अब जिसको जितना मीठा पसंद है उतना रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और खा लीजिए।
0: मिठास लेनी है आपको, लगता है कि भाई इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए।
1: बिल्कुल।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और गीत में जो बात थी कि आए हैं दिन सावन के,
1: जी
0: तो सचमुच सावन का महीना चल रहा है और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं। रिमझिम
1: बिल्कुल
0: बारिश अच्छी लगती है और उसके बाद जो हरियाली छा जाती है उसका तो कहना ही क्या। और कुछ बातें या कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है। हमारे कार्यक्रम में देख लो या हमारे इस स्टूडियो में, है ना।
1: जी
0: तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी छह आने का टिकट, इसका पहला भाग, आइए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: छह आने का टिकट। पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी छह आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग।
4: उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुन

0: गुनगुना रहे थे। और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां ये बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड 3 रंगों में छपाया था और हरेक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह, बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
1: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?
0: बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हां।
1: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
0: कोई समय तो उनका ठीक नहीं है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?
1: जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूं, अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूं। वो सामने मेरा असबाब रखा है, मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहां हैं?
0: और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। एक हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है।
1: अरे वो यहां नहीं है क्या?
0: नहीं नहीं।
1: ओह, खैर दफ्तर तो है, यही रहूंगा एक हफ्ता, कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा।
0: ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा,
2: नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा।
0: मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा,
1: आप ही किशोर जी हैं
0: जी,
1: आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
0: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं? हाँ हाँ हाँ हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान
1: रखिए। जी जी जी जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता
0: जी।
1: चोरों और बदमाशों का वहां जमघट रहता है।
0: अच्छा।
1: और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा
2: क्या?
1: उससे आपकी

0: सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा।
1: मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? उफ, खैर। चार दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
0: कल रात मैंने यह तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
1: जी?
0: जी जी जी। इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
1: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं, लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
0: किशोर जी।
1: हाँ बोलिए।
0: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।
1: बड़ी प्रसन्नता की बात है।
0: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
1: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
0: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा।
1: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
0: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
1: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
0: ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आने पर चला जाऊंगा।
1: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा यह दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
0: किशोर जी।
1: जी।
0: आज तो आपकी छुट्टी है।
1: हाँ।
0: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
1: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
2: अरे भाई भीखू,
1: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ। और 2 6 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया। ठीक है?
0: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा।
1: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
0: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
1: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक

अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं। जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है, राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

अभी आप सुन रहे थे कहानी छह आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: धरती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती हैं। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती
1: है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
2: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितेशी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं। जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपने मुश्किल से उबरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए। और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको उसका कोई हल निकाले।
1: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की नानुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है।

0: इसका मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरे और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी, आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया।
1: ये सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीजें हमारी मजबूती बन जाती है।
0: हाँ।
1: और जब भी लगे कि मुश्किल ज्यादा भारी हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने छोटे
0: छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
1: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
0: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो, लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया, वो हो गया, ये कह कह कर ही हम उस समस्या को मुश्किल
1: और बड़ा बना लेते हैं,
0: बड़ा बना लेते
1: और बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना होगा।
0: तो हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने की बात करेंगे ना, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं, कोई सजा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है, हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीजें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की जरूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है, ये भी हमें ढूंढना होगा, और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
1: बिल्कुल। और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: और कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर, आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्द पूर्ण व्यवहार हैं, आपके चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीजें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है, क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं, मैं हूं ना साथ में,
1: बिल्कुल
0: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
1: बिल्कुल
0: है।
1: हमें संबल देता है और हमें लगता है कि हम अकेले नहीं है, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा। और घबराने के बजाय थोड़े से जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाए और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। हर मुश्किल के बाद दो चीजें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है लेकिन हुनर जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे, लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम एक दिन पहले लाके रख देते हैं, दालें लाके रख देते हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं, सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीजों का असर कम होगा।
0: बिल्कुल, कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: तो भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती, और ये हर इंसान के जीवन का एक

0: अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण यह पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है। निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
1: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं जो सफल व्यक्ति हैं,
0: बिल्कुल महान व्यक्ति जो हुए हैं,
1: उन्होंने सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया तभी वो सफल हो सके।
0: हाँ, एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझकर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
1: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराए नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे न हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, राहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल के जिद पर अड़े रहना, तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है पर यह परखती है कि अपना इरादा ये हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना। और मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इस तरह की बातें कहकर हमारी हौसला अफजाई करे।
1: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
0: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें, सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक इसको शैलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं, बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और एक चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसे।
1: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं। और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता है। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है,
1: जरा ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है
0: नहीं
1: ना?
0: है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आम तौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धूरत जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
2: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है ये माध्यम से।
1: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल इसमें, ये चीजें डाल दो, ये कितना खतरनाक लग रहा है। यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
2: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
1: लेकिन बतौर विशेषज्ञ आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
2: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20,000 से 22,000 है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1,00,000 के ऊपर है तो इस पर से आप समझ
1: ज्यादा है।
2: यस
1: जी जी।
2: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को। तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो

0: को अमल कीजिए कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरिया अटैक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा. जमाल गोटा एक इरिटेंट है, इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें.
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
0: हाँ,
1: पर थोड़ा संभाल के.
0: बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा
1: बहुत संभाल के. बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं.
0: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
1: जी,
0: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है.
1: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा.
0: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
1: जी. आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहां जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा.
0: बिल्कुल.
1: तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए? मैं कर दूं?
0: आप कर दीजिए.
1: हम सब उस्ताद हैं. फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं.
0: हाँ.
1: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम.

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग। आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है, मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है। और जब बाल में टक्कल बालनेस दिखाई देता है तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है।
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है
1: तो बालनेस कभी दिखाई देता है। 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है।
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है।
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत मैं बताती हूं तो रफली 30-40-50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है। मैं नहीं मानती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी।
1: मैंने के कितने हो गए तो 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
0: 40-50
1: लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए, आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं।
0: और पुरुषों में
1: हेयर काउंट नहीं समझ में आता क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं, पर जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे, कुछ दिन तक आ रहे हैं और महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है, इसको नॉर्मल नहीं कहा जाता है
0: जी।
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपका हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेंडिक एलोपेशिया वेरी बहुत कॉमन चीज है, ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देख

0: ये जो आपने टर्म यूज की,
1: हाँ,
0: ये क्या है?
1: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं, वो देखा जाता है
0: ब्लू कलर की रोशनी में।
1: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें, तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं। उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है। दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो ये जो इनिशियल साइन होता है, बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं, और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू। सिंपल चीज है, एक अपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है, और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं,
0: बिल्कुल,
1: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है। तो वो आहिस्ता जो आना है, वो प्रमाण 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है।
0: जी बिल्कुल,
1: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन।
0: ये समझने की बात है,
1: ये समझने की बात है। तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है, और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूं कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के।
1: डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है ट्राइकोलॉजिस्ट,
0: ओके,
1: एक डिग्री नहीं है।
0: जी जी,
1: हाँ। अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं,
0: ओके,
1: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूं, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर, यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं।
0: जी जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं, 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
0: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं, किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
0: जी,
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग,
0: और उसका असर बालों पर जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी। महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
1: महिलाओं में PCOD नाम सुना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी PCOD हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
0: जी,
1: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है, पहले के

0: जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे,
1: करेक्ट,
0: रिक्शा के पैसे बचाते थे
1: बढ़िया
0: तो
1: बात,
0: हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो पीसीओडी और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होके उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि पीसीओडी है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल,
0: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
1: नहीं,
0: 40 साल के 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया।
1: जी ये बहुत आज के जमाने की चीज।
0: यस, और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
1: जी,
0: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
1: एक तरह से आप जो है वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई अगर खान पान ठीक नहीं किया तो इसका असर,
0: सभी चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, एक गाने के लिए रुकते हैं।

जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठाशी का काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक

0: उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं
1: हाँ।
0: और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने लगती हैं।
1: दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो वो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है वहां हेयर फॉल होता है।
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के।
0: ओके,
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है। आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी। आप एस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं बोल सकते।

0: युवा अवस्था में जा रहे हैं और वहां उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है जब, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है,
1: इस उम्र में तो सबका होता, सबका, हमारा
0: हाँ,
1: भी हुआ था,
0: बिल्कुल यही डायलॉग होता है।
1: जी जी जी, तो इसको कैजुअली नहीं,
0: हाँ, इसको कैजुअली नहीं लेना है। आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है। वही जो मैंने पहले बताया,
1: एक बार फिर बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल,
0: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30-40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी रीठा शिकाकाई चाय पत्ती जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना घरों में?
0: मेहंदी रीठा शिकाकाई ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, प्याज का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं,
1: उल्टा हो जाएगा।
0: सी, इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के और उनके इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लेसिबो जैसे भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बॉटल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे, और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
1: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा?
0: यस। सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन मैंने चालू किया या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माई माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, ऑल इज वेल।
1: जी,
0: यू विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
1: ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगी।
0: yes.
1: मुझे लगता है कि यहाँ पर एक गाने की बारी है।
2: न झटको जुल्फ से

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे
1: हैं। तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे?
1: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी,
1: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
0: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
1: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
0: ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
1: सभी बीमारी का नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर की वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
0: ओहो,
1: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
0: बिल्कुल नहीं, नहीं मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
1: नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
0: इन अ मंथ है?
1: इन मंथ।
0: ओहो,
1: इन अ मंथ।
0: तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल,
1: 12 सेंटीमीटर साल में।
0: हाँ, तो 10 साल में
1: तो आप करिए।
0: नहीं नहीं, ये हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
1: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
0: ओहो,
1: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं,
0: लेकिन वो थिन रहेंगे।
1: वो थिन, थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
0: जी,
1: तो वही कहना है वापस शेडिंग को पहले रोकिए।
0: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
1: यस,
0: बढ़िया गाना कैफी आजमी का है। तो ये
1: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए।
0: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत, और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है कि दो महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं?
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी,
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉइंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से, तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है, पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए,
0: और यहाँ तो उल्टा दिन भर का खाना रात को हो रहा है।
1: हाँ, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है।

0: हैं, फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है लाइनिंग वो खराब होने चालू हो जाती है।
1: यस यस बिल्कुल
0: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है इसके साथ, जब ये रिसर्च किया हुआ है इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब ये मैच होती है, जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिजोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा।
1: बिल्कुल
0: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
1: चिंता की बात है।
0: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका,
1: जी
0: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
1: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: अच्छा, कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है
0: जी,
1: या
0: और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है। स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है, कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी?

0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: किसी कारण से अच्छी नहीं है ना, इवन पैसिव स्मोकिंग। कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं, तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर।
1: बिल्कुल, अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है।
0: बहुत बड़ा भ्रम है
1: जी।
0: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है
1: जी,
0: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है। हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप कोरोना टाइम में पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों?
1: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है,
0: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
1: जी,
0: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है, एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है।
1: तो ये समझने की जरूरत है।
0: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
1: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: यस,
1: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

श्रोताओ, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में।

0: अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन।
1: आकाशवाणी जयपुर, समय वर्तमान अपराह्न 5:00। आरंभ करुछु आजिरो सांध्या अधिवेशन। कार्यक्रम प्रचारित हेउछि मीडियम वेव रे 204.5 मीटर तथा

आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार

0: लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मदुरोफ के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: सुनिले हिंदी रे संवाद रिलेकली प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रु आपणमाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु। शुणन्तु आज सान्ध्य अधिवेशनरे प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम सम्पर्करे किछि सूचना। श्रीमद् भागवत प्रचार करिबो सन्ध्या 6:20। सन्ध्या 6:55 आजिर प्रसंग ରାତି 7:25 ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ କ୍ରମରେ ଶୁଣିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी।
1: बड़ बहु एटा तुम नारे
2: एते जल्दी कोन पाई
1: अरे आउ सान बहु एटा तुम नारे आउ एटा मो कंधीरा नारे
2: किंतु जेजे मा तुम नारे
3: सब किछि मो बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब थिरे यांको हित नमनी रखिछि काली को जेबे मु नथिबी सेतबेले यांको टंका मिलिबा सहज हेबो
1: सुबह सुबह कुह
4: आरबीआई कहे
1: सचेतन हुवंतु सतर्क रुहंतु।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: नाम होचे गौतम सावत, ग्राम हतापुर, पंचायत रणशाली, ब्लॉक पुरुषतमपुर, जिला गंजा। मु प्रधानमंत्री फसल बीमा करिथिबा जोगु आर्थिक 85,000 टंका सहायता पाइले। प्रत्येक चाषी भाई भौणीको अनुरोध, समस्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा करन्तु।
2: खरीफ फसल बीमा पाई शीघ्र पंजीकरण करन्तु।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जनसेवा केन्द्र CSC को जोगाजोग करन्तु।
2: फसल बीमा संबंधी सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर 1444 को कॉल करन्तु।

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ପରେ ଶୁଣିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ 8 9, ଶେଷରେ ଶୁଣିବେ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
3: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर

0: शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
3: We have free trade agreements or preferential market access.
2: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
4: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और

0: सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक

0: आकर 77,379 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 पर बंद हुआ।
1: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3 के मुकाबले 5 गोल से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. The Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary ERS, Mayank Singh, were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade, and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
3: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
2: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, the Russian President offered to increase fertilizer supplies to India.

0: कबाट खुल दियो
1: डॉली डॉली प्लीज ओपन द डोर
2: ओके ओ गॉड
1: कौन है डॉली
2: डॉक्टर भट्ट मुंडर गोड़ जाए बर्षा जुड़बुड़े हो जाती ना छता ना रेनकोट ओह गॉड व्हाट डू यू मीन देहटा सारा खाली पानी आ खादुओ
1: गलो तू कॉफी तैयारी करी ऑफिस को नहीं आ बी ए गुड गर्ल
0: दीदी

0: अरे परमिंदर, तमे हाँ शुण, एने शोभा बोली किए जने फोन करथिले न्यूयॉर्क रु। कुआडे जाउछ पमी?
1: कौन कहुछ?
0: ए शोभा किए?
1: ता स्वामी जने गारमेंट इम्पोर्टर, बहुत बड़ बिजनेस अछि।
0: से तो कहुथिला तमर गर्लफ्रेंड बोली।
1: डोंट बी स्टुपिड, काम पे लोकों के संगे चिन्हा परिचय हुए।
0: एटा चिन्हा जणा नुहे, अनेक दिन हला देखुछि घर द्वार स्त्री पुओ कहा प्रति तुमर ख्याल नहीं, बिजनेस भी बंद हेबा उपरे स्टोर रे तो ताला झुलुची, हेले सेति प्रति तुमर चिंता नहीं, दिन सारा घर भितर चुपचाप पड़ी रहुच, नहले दिने दिन धरी केउ आडे अंतर्ध्यान हो जाउच। शोभा पाख को जाउच ना, आज से मते फोन रे इनसल्ट करिची।
1: तमरा कुछ कहबार अछि?
0: पमी, अनेक दिन हो गला तुमे मो साथ रे भलो भाबे कथा कहुन, किछि पचारले बिगिड़ी जाउच, मो विषय रे नहु पछे तुमरो सोनु विषय रे टिके चिंता कर।
1: एंती बेकार कथा गुडा कर जवाब मो पाखन नाही।
0: पम्मी, इफ यू सी दैट बिच, इफ यू सी दैट बिच अगेन आई विल किल यू।
1: बिना बिना मो तुम कहू छी पागलिन को परे होनी, मो मन भल नाही। ओ कोने गुडा खोची मो किछ बुझी पा।

0: ଶୁଣିଲେ କେତୋଟି ପୁରୁଣା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରର ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ହାଲୋ ସ୍ପନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଷୟଟି ରହିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତାର କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
2: With a large domestic market.
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्त तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और